0: बकुमत मालती, अगर वो सच्चे हैं तो हम झूठे हैं क्या?
1: सारी दुनिया यही कहती है, मेरा दिल भी यही कहता है।
0: मालती,
1: अगर ऐसा नहीं है तो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मंजू को दुनिया की आंखों से कहां छुपा दिया? वो मेरी बहन है, क्या ये झूठ है? वो आपकी बेटी है, क्या ये झूठ है?
0: मालती,
1: इन गरीबों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। ये सच्चे हम झूठे हैं, ये सच्चे हम झूठे हैं।
0: मालती, खबरदार, दूसरा जापान चलाई।
1: पिताजी।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: इन गरीबों का हक आप इनको देते क्यों नहीं पिताजी?
1: इन भिखारियों के सामने मैं अपना सर झुका दूं, तुम ये कहना चाहती हो?
0: मगर वो सच्चे हैं पिताजी।
1: बकुमत मालती, अगर वो सच्चे हैं तो हम झूठे हैं क्या?
0: सारी दुनिया यही कहती है, मेरा दिल भी यही कहता है।
1: मालती,
0: अगर ऐसा नहीं है तो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मंजू को दुनिया की आंखों से कहां छुपा दिया? वो मेरी बहन है, क्या ये झूठ है? वो आपकी बेटी है, क्या ये झूठ है?
1: मालती,
0: इन गरीबों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, ये सच्चे हम झूठे हैं, ये सच्चे हम झूठे हैं।
1: मालती, खबरदार, दूसरा जबान चलाई
0: पिताजी।

0: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
1: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो, तारीख 14-23 ઓગસ્ટ सवारे 11-10 વાગે राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।

0: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
1: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14-23 ऑगस्ट सवारे 11-10 वागे राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहां नारा बागनी पासे पालनपुर।

0: तुझे कहता।
1: आ रक्षाबंधन मात्र भाईनी कड़ाई पर राखड़ी नहीं पण गुजरातनी बहनोना स्वावलंबनना स्नेहथी बनावेली राखड़ी बंधाशे। बधाज तहेवारोमां आवतो भाई बहनना संबंधनो पवित्र तहेवार एटले रक्षाबंधन।
2: आ रक्षाबंधन पर गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड महिला अने बाळ विकास विभाग द्वारा आयोजित कर्यो छे राखी मेळो, ज्यां गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओनी बहनोना स्वावलंबनने प्रोत्साहन आपवा तेमना द्वारा उत्पादित राखड़ी तेमज घरगथ्थु अवनवी वस्तुओना प्रदर्शन सह वेचाण करवामां आवशे। तो आवो तारीख 14 थी 23 ऑगस्ट सवारे 11 थी रात्रे 10 वागे राखी मेळो ब्रह्मर्षि हॉल जहानारा बागनी पासे पालनपुर।
3: हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर हूं छु आपनो दोस्त आपनो होस्ट आरजे यार। अब सौ माटे सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवड़ी मंडल संचालित आपणा सौना अवाज એવા રેડિયો પાલનપુર પર લઈને આવું છું ડોલર વહુ નવલકથા। નવલકથા એના લેખિકા છે સુધા મૂર્તિ, સામાજિક અગ્રણી અને ઇન્ફોસિસના પ્રણેતા। આ સુધા મૂર્તિએ લખેલી આ નવલકથાનો આપણી ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો છે સુધા મહેતાએ। સાંપ્રત સમયમાં પણ આપણે સૌ વિદેશ અને ત્યાંના નાણાં અને તે પરિવારોને આપણા કરતાં કંઈક મોટી ઉછેરા માનીએ છીએ અને એટલે જ એ ડોલરની કિંમત